एजेंडे में शामिल होने का इम्कान है। अप्रैल में मशरक़ वुस्ता से जापान की खाम तेल दरामदात का हजम एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन दो तिहाई कम हुआ। इसकी वजह आबनाए हुरमुस की अमली बंदिश थी। वजारत ख़जाना का कहना है कि दरामदी मकदार साल बसाल के लिहाज से 67.2% कम होकर तकरीबन 3.8 मिलियन किलो लीटर रह गई। नेफ्था समेत तेल के ज़ुमरे में आने वाली तरसीलात 79.4% कम रहीं। खित्ते से माया कुदरती गैस की दरामद में 76.1% कमी आई। मज़कूरा दरामदी कमी को पूरा करने के लिए जापान ने दीगर ममालिक और खित्तों से तेल की मसनूआत खरीदने की राह अपनाई। अमरीका से खाम तेल की दरामदात में 38.8% इजाफा हुआ और वहाँ से नेफ्था की तरसील में भी कई गुना इजाफा हुआ। तेल की दरामद के ये आदाद व शुमार अप्रैल के लिए जापान के तजारती तवाज़ुन पर वजारत ख़जाना की रिपोर्ट में मौजूद हैं। मजमूई तौर पर जापान में अप्रैल में तकरीबन 302 बिलियन येन यानी तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर के तजारती फाजिल की इत्तला दी गई है। सेमीकंडक्टर से मुतल्लिका मसनूआत की मांग में इजाफे के सबब कीमत के लिहाज से बरामदात में 14.8% और दरामदात में 9.7% इजाफा हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिए है कि वो ताइवान को अमरीकी हथियारों की मुमकिना फरोख्त के बारे में ताइवान के सदर लाई चिंग ते के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप बुध के रोज़ वाशिंगटन डीसी के करीब एंड्रयूज जॉइंट बेस पर नामनिगारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हथियारों की फरोख्त के बारे में कोई फैसला करने से पहले लाई को फ़ोन करने का इरादा रखते हैं तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करता हूं। मज़कूरा मामले से निमटने के बारे में ट्रंप ने कहा कि सूरत हाल पूरी तरह से हमारे काबू में है। इसके बाद उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सरबराह इजलास को इंतहाई अच्छी मुलाकात करार दिया। ट्रंप ने मज़ीद कहा, हम इस पर काम करेंगे ताइवान के मसले पर। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने शी के साथ अपनी बिलमुशाफा मुलाकात के बाद ताइवान को हथियारों की मुमकिना फरोख्त के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए ताइवान को चलाने वाली शख्सियत से बात करना होगी। इसके जवाब में बुध के रोज़ लाई ने भी बातचीत पर आमादगी का इशारा दिया। इससे कबल ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की मुमकिना फरोख्त को सौदेबाजी के लिए बहुत अच्छा हथियार करार दिया था।